मैं दोएहा कैन सिगा रोज मर रही थी बिपनार होए हाँ तीरु ताइर फिस में हा कुंच